0: begini. Kemudian yang itu, itu tuh perbuatan susah mengaku kabar lain tuh sah. Dan habis dia pun mengaku kabar lain, mana itu dia komitmen baca kan kali lebih seperti satu siri. Usai komiti, dan itu tuh perbuatan dalam bukan yang mana tetap ada. Ada cuci pisang yang oli bani, aku minta di mana ya, dari ya kosa. Yang mana itu pernah ini dia, dan itu tuh mah perjalanan lebih lancar ini. Ini mana yang kali ku kabar mau di mana kosa. Ini kapal mahal di sini, kalau sih susah mengaku kabar lain tuh sah. Ini kapal mah, ini bosan dekat, terbawa sana itu tuh. एकता अभियान का जोर के का दल और का भारतीय समर्थन और को समायोजन में बाकी शीर्षक में देखिए को खबर में करीब एक वर्ष देखिए तो दल का नेतृत्व में चल रहे तो एक को महाधिवेशन अनिश्चित होने को लेकर है तो सब महाधिवेशन का भी विषय में कल बहुत सहमति सब पहले करने होने निर्णय होना बाकी सब इस देश में दो महीने राजनीतिक अभियान चलाने निर्णय भाई को नेकपा का प्रवक्ता प्रकाश सुवाला बताने भाई को सब डिफेंस कोर्स का लगे छुट्टी विश्वविद्यालय स्थापना हो गई संसद दौड़ता भयो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक शीर्षक में अर्थ खबर रहे सुरक्षा अधिकारी आवश्यक नेशनल डिफेन्स कोर्स सहित सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी अन्य विषय अध्यापन करा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना कर लगे हो सरकार ने नेपाली सेना को हरेक देश में संचालन करने वाली राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेशनल डिफेन्स यूनिवर्सिटी कर लगे हो रक्षा मंत्रालय ने प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय संबंध में व्यवस्था प्रधानमंत्री को संबोधन का साथ स्थान दी विपद विश्व के लिए चेतावनी हिमगती रही भिषा व राहदानी बोके यात्रा करते जलवायु न्याय साझा जिम्मेवारी हिमालय जलवायु अनुकूल उत्थान संयंत्र स्थापना गरौं भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी 25 जिल्लामा यातायात सञ्चालन रोक्न भन्ने शीर्षकमा अर्को खबर लेखिएको छ लगातारको वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पर्ने र डुबानको जोखिम बढेपछि सडकदेखि बस्तीसम्म जनजीवन प्रभावित बनेको छ नदी तथा खोलामा पानीको प्रभाव पर्दा कति बस्ती डुबानको जोखिममा परेका छन् भने पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो र लेटुले सडक तथा यातायात अवरुद्ध बनाएको छ गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ललितपुरको चुरासल स्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको मुख्यालय आसपास क्षेत्रमा पुगी खोला तथा पानीको गहनको अवस्थाबारे सुरक्षाकर्मीसँग जानकारी लिनुभएको थियो सोक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सुरक्षाकर्मी उच्च सतर्कता तथा कार्यक्षेत्रमा खटिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो मुख्य राजमार्ग र सडक अवरुद्ध भइरहँदाखेरि यातायात सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएको खबरमा उल्लेख रहेको छ
1: सरकार को प्रमाण और देश का खबर

ये बारिश को ज्यादा ये को सहायता करने की अनुभव सुन इसलिए सभी सभी मंत्रालय ठूल भोपाली व्यवस्थापन को संपर्क मंत्रालय समेत राष्ट्र संघ जनाएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले हाल करिब 1 करोड 13 लाख मानिसलाई यस दुर्घटना

0: ప్రజలు ఎంతేనాది
1: సామాజిక రూపాంతర కాలనీలో సామాజిక సూచనా నెట్వర్క్ సిఐఎన్
2: खबरों को मौसम पूर्वानुमान सूचना को महत्वपूर्ण प्रसंग तीन दिन लगातार वर्षा का कारण देशभर को जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। मुख्य करी नदी तटीय क्षेत्र में जोखिम बढ़े यस अवसर में मौसम संबंधी जानकारी कति आवश्यक छ भनेर हामी

तैयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धीरे गए हुआ मोटू रोग को जोखिम बढ़ाने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन व्यक्ति ने दैनिक 5 ग्राम सम्म नुन सेवन कर उपयुक्त होने सलाह दिया।

0: situación. Has pensado muy lo más. Otras veces te tapas muy pasado. Has felicitado por la sensación.
1: झट्ट बढ़त ध्यान निधि जीवन खत्म हुई
2: संतुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी
1: धूम्रपान मदिरा मसे दूर रही तनाव भन नियंत्रण करी
2: आज निर्णय कालिक जीवन अजरार निसरना रोग मसे बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई
3: रेडियो गुरुबाबा FM द्वारा जनहित मजारी संदेश
4: आफ्नै भाषा आफ्नै आवाज समावेशी रेडियोको साझा आवाज यो हो रेडियो गुरुबाबा FM 89.7 मेगाहर्ज

0: 대한 로펀드의 시점에다 러시아의 바하이와 아마의 권력에 가해 많이 쓰는 베스미크가 우산하고서 다들 같다는 딩딩이 벌어져 있죠. 그래서 약간으로 간단하게 갔더니 되는 문제인데 이스스미가 아직까지 잠깐 꿈었던
1: कुनै शंका लागेमा तुरन्त नजिकैको सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी दिनुहोस्। आपतकालीन अवस्थामा कहाँ कल गर्ने? नेपाल प्रहरी 100 वा 1113 मानव बेचबिखन विरुद्धको ब्युरो 1177 तथा बाल हेल्पलाइन 1098 कल गर्नुहोस्।
2: सजग नागरिक सुरक्षित समाज मानव बेचबिखन विरुद्ध सबैको साथ
1: हामी मिलेर मात्र रोक्न सक्छौ मानव बेचबिखनको जाल। बाँके युनेस्को क्लब र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

पीपल ये विषय में बातचीत करती गई थी। ये कुमार की नौपति से एकादशी सब मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से सूचना कर पानी वर्षा होना संभावना अलग जानकारी मिला से बसरी नगर पालिका से पीपल में से दस लाख कहाँ कहाँ काम करती है अथवा पूर्व तैयारी कहाँ करा करना विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। अपन नागरिक भूखन बसरी नगरवासी नागरिक भूखन कसी को सचेतना व्यक्तिवा करना विषय में हम छलफल कर रहे हैं। छलफल कर बसरी नगर पालिका पीपल भूखन पर्सन सुशील थापाजी यहाँ फिर धन्यवाद आज देश में विपद संबंधी छलफल कर रहे हैं।

0: जय गुरुबाबा। संध्या पांच बजे मौसम रेडियो में स्वागत है। मैं इंद्र चौधरी। राज्य में लगातार तीन दिन से आते अलग पानी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। लगातार का पानी है आपका मतलब धारण छोटो मजदूर चावला के ताजे किसानों का जनजीवन घाटा। सदा मौसम विज्ञान के अनुसार कल कुमार 11 घंटे समूह बढ़ गया तथा आस पास के क्षेत्रों में पानी पड़ना संभावना रहेगा। निरंतर वर्षा के कारण मध्य कर्णाली वही रूरा भोपाल प्रणाम के पानी बहाव में रहेगा। कल से बांसुरी लगने जिला का कई कई ठावर डुबान का समस्या देख रहा है। लगातार का पानी के कारण चावला का स्थान में छोटे पुराना का साढ़े चार संगनी का स्वयं चौधरी बढ़ रही थी।
1: बारह बजे समय पानी पड़ना के खबर बाट ये अब हमारा तो जमा कपड़ नाली भरल बा उमर तारीख बजे मन कपड़ हमारा घर पानी रह

0: बताया कि अलग स्वस्थ संतान को अवस्था को स्तर पाना और खाना का संकल्प नियमित रूप में आयरन कैल्सियम खानी सुखाए स्वस्थता सुरक्षित परिवार
1: रेडियो प्रभाकर एफएम द्वारा सुरक्षित मजारी संदेश
2: कुछ
3: दिखाई दिखा

0: 5.5 तालिका साथ देउराका सीतारानी थामको प्रश्न लेखाएका थिए।
1: तीन वर्ष वितरण गर्ने छुट्टा केसी समूहले तीन वर्ष अस्तित्वमा वितरण गराइसकेको छ।
0: सीतामाढीजी आफ्नो प्रश्न पत्रमा पाँचपुरी नगरपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख लाल बहादुर खड्का पुछौटी सुनिला आफ्नो प्रश्नको जवाब।
2: छुटेको समूहहरू छ त्यो समूहहरूको आफ्नो के अरे वार्षिक लाग्छ र त्यसको साथमा जस्तै एक वर्ष पन्ध्र वर्ष बस्छ है पन्ध्र वर्ष बसेर कार्यक्रमहरूमा बिर्सिहाल्छ
0: काम शिक्षा स्वास्थ्य खाद्य पानी सरसफाई विद्युत लगायतका विषयमा पूर्ण समस्यामा जिज्ञासा दाखल
1: सचिव अमृत बहादुर सहभागी जितना सही प्रधान हिसाब से आत्मा जो सभा संगठन का भी प्रधान प्रवेश मशीन में निकले ताकि देश और समुदाय में कम से निर्माण का अवसर देना जो महापटल प्रश करी कर बचे बस जलवायु परिवर्तन मशीन सीधे इस व्यक्ति जयंती का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके नेपाल भारत और चीन का नेतृत्व में हिमालय

साझेदारी मात्र प्रशासन कार्यालय प्रक्रिया द्वारा जनहित में जारी संदेश।

जेरस्ती अवसर त्यारसा प्रवासी शुक्र मेरी भी तरफ इस मित्र का इलाज सब जाना पत्ता हो दाल वन खाए वन औषधि देशपति विषाक्त चीजें पूरी का समय खाओ खतिरा भक्त को समय अरे सारा संबंधी रोग को समय हाथ खुटा साउंड करें

मुजफ्फरपुर बाहे सुदूर पश्चिम का सरस्वती पहाड़ी जिला में आज बिहान 7 बजे देखि भोलि बिहान 7 बजे समय का छोटो तथा लामो दूरी का कुछ गाड़ी चलाउन नपाइने सम्बन्धित जिला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले सूचना थाहा नपाइएर पहाड़तर्फ गएका गाड़ीलाई बीच बाटोबाट फर्का

37 लाख 37 करोड़ 85 लाख बराबर को अवैध किराना सामान और पटाखा छूटे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मोटर तथा कस्मेटिक लगाया सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले उक्त सामान उसार प्रसादमा संलग्न 10 करोड 22 लाख भन्दा बढी मूल्यको सवारी साधक समेत नियन्त्रणमा लिई भन्सार दाखिला गरेको सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले सीआईएसँग बताउनुभयो।

नेपालका एक सुन्दर सुन्दर होला एघार तेह्र मानव बेचबिखन गन्तव्य हो एघार

सरकारी कोचिंग पार्लर प्राधिकार द्वारा नोट के सोचे उत्तर सर्वदा